अष्टपदी उरे गुर का सुनोपदेश पार ब्रह्म निकट कर पेख सास सास सिमरो गोबिंद मन अंतर की उतरै चिंद आस अनित त्या गोहत रंग संत जना की तूर मन मंग आप छोड़ बेनती कर हो साध संग अग्न सागर तर हो हर तन के पर ले हो पंडार नानक गुर पूरे नमस्कार खे मुकसल सहज आनंद साध संग भज परमानंद नरक निवारो धारो जियो

उस्ततनिंदया नहें देह कंचन लोह समान कहो नानक सुन रे मना मुकत ता है तै जान।

चेत प्राणी कशु न चेतई मद माया कैयंद कहो नानक बिन हर भजन परत ताहे जम फंद जो सुख को चाहे सदा शरण राम की लेह कहो।

मानव जैसे सुकर सुआन, नानक मानव ताह तन स्वामी को गृह ज्यों सदा, स्वानत जत नहीं नित नानक है बेद हर भजो, एक मन होए एक चित।

पांचौ संग बरंगन लाव हैं बैरारी करनाटी तरी गवरी गाव हैं आसावरी तेह पाछ सिंधवी अलापी श्री राग स्यो पांचौ थापी सालू सारग सागरा और गौंड गंभीर अष्टपुत्र श्री राग के गुंड कुंभ हमीर खष्टम मेघ राग वह गाव हैं पांचो संग बरंगन लाव हैं सोरठ गोंड मलारी तुनी पुन गाव हैं आसा गुन गुनी ऊंचे सुर सुहो पुन कीनी मेघ राग स्यों पांचों चीनी।

सोई छीसी, जो तू देहे सोई हम पाई रहाओ। सब तेरी तू सबनी त्याया, जिसनों कृपा करहै तिन नाम रतन पाया। गुरमुख लादा मनमुख गवाया, तुदे आप विछोड़िया आप मिलाया। तू दरियाओ सब तुझ ही माहे, तुझ बिन दूजा कोई नाही। जी जंत सब तेरा खेल, विजोग मिल विछुड़िया संजोगी मेल। जिसनों तू जान आए सोई जन जाने, हर गुण सद ही आख बखाने। जिन हर सेविया तिन सुख पाया, सहजे ही हर नाम समाया। तू आपे करता तेरा किया सब होए, तुद

कृपा करी हम पर जगमाता, ग्रंथ करा पूर्ण सुब्राता, किलविक सगल देह को हरता, दुष्ट दोखियन को क्षय करता, श्रीअस्तु जप भय दयाला, पूर्ण करा ग्रंथ तत्काला, मन बांछत फल पावे सोई, दुख न तिसै व्याप्त कोई, अड़िल सुने गुंग जो जाहे, सुरस न पावई, सुने मूढ़ चित लाए, चतुरता आवई, दुख दर्द पाव निकट न तिन नर के रहै, हो जो या की एक बार, चौ पई को कहै, चौ पई संबत सत्रह है, सहस पणि जय, अर्ध सहस फुन तीन कहि जय, भाद्रव सुदी अष्टमी रववारा, तीर स्तद्रव ग्रंथ सुधारा, स्वैया पाए गहे जब ते तुमरे, तब ते को आंख तरे नहीं आन्यो, राम रहीम पुराण कुरान, अनेक कहे मत एक न मान्यो, सिमृत शास्त्र वेद सबै, बहु भेद कहे हम एक न जान्यो, श्री स्पान

अमृत नाम ठाकुर का पयो जिसका सब सधारो जे को खावे जे को पुंचै तिसका होए उधारो एह वस्त तजी न जाई नित नित राखे उर तारो तम संसार

त्यावे चितावन का सदका सर्व सुख होवे। जहाँ जहाँ खालसा जी साहिब तहाँ तहाँ रक्षा रियाय। तु देख देख पते बिरद की पैज, पंथ की जीत। श्री साहिब जी सहाय, खालसे जी के बोल बाले बोलो जी। सिखा नू सिखी दान, केस दान, रहत दान, विवेक दान, मिसा दान, भरोसा दान, दाना सिरदान, नाम दान। श्री अमृतसर साहब जी दे इशनान, चौंकियां झंडे बुंगे जुगो जुगे अटल, धर्म का जयकार बोलो जी। सिखा दा मन नीवा, मत उच्ची, मत दा राखा, वाहिगुरु हे अकाल पुरख अपने पंथ दे सदा सहाई दा तार जियो। श्री ननकाणा साहिब ते और गुरुद्वारियां गुरुधामां दे जिन्हां तों पंथ नूं भी छोड़िया गया है जी, खुले दर्शन दीदार ते सेवा संभाल दा दान खालसा जी नूं बख्शो। हे निमाणियां दे माण, निताणियां दे ताण, न्योटियां दी ओण, सच्चे पिताप वाहिगुरू धन धन। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जीओ महाराज आप जी दी पावन पवित्र हजूरी अंदर अरदास बेनती जोदड़ी सतगुरु जीओ। संध्या समय शब्द चौंकी सोधा रहरा साहिब जी दे पाठ जी की अरदास, गुर शब्द विचारा हुईयां, आरती कीर्तन होए, छे पौड़ियां आनंद साहिब जी की अरदास, भुल चुक माफ करनी, अगे तो शुद्ध ते स्पष्ट गुरबाणी पढ़न विचारन की दात बख्शनी। दारा इस संगत नूं अपने दरों घरों गुरसिखी सिदक भरोसा नाम दियां दातां बख्शनियां करो कृपा सतगुरु जीओ। कड़ा प्रसाद दी देख सज के हाजर है, दर प्रवान होवे, प्रवान होया प्रसाद, संगत विच वरताउण दी आग्या बख्शनी करो कृपा। पावन हुक्म बख्शिश करके संगतां नूं निहाल करो, चढ़दियां कला करो सतगुरु जी। सुख होवे नाम चित आवै, नानक नाम चढ़दी कला, तेरे भाणे सरबत दा भला। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦੁਹਰਾ ਗਿਆ ਭਈ ਅਕਾਲ ਕੀ। ਸਭ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਜੀ ਮਾਨਿਓ, ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਮਿਲ ਬੋਚਾ ਹੈ, ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ, ਖੁਆਰ ਹੋਏ ਸਭ ਮਿਲਾਂਗੇ, ਖੁਆਰ ਹੋਏ ਸਭ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।

अब सिख सतगुर के प्यारे हो, गावहु सच्ची बाणी, बाणी ता गावहु गुरु केरी, बाणियां सिर बाणी, जिनको नदर कर्म होवे हृदय तिना समाणी, पीवह अमृत सदा रहो हर रंग, जपे हो सारिंग पाणी, कह नानक सदा गावह एह सच्ची बाणी, कह नानक सदा गावह एह सच्ची बाणी। सो कहो टल गुर सेविए एहनिस।

0: अनिल अनाद अनाद जुग जुग एक वेस।
1: आसन लोए लोए भंडार जो किस पाया सो एकावार।
0: कर कर विखे सृजन हार नानक सच्चे की साची कार।
1: आदेश से आदेश आद अनिल अनाद अनाद जुग जुग एक वेस।
0: एक दूजी पाव लख हो हे लख हो वह लख वीस।
1: एक नाम जगदीश
0: ये त्राहि पद पवड़िया।

0: संग पंजय
1: नमस्तन उदारे नमस्तन पारे
0: नमस्तन सुए के नमस्तन नेके
1: नमस्तन भूते नमस्तन जूपे
0: नमस्तन निर्कर्मे नमस्तन निर्भर
1: नमस्तन निर्देशे नमस्तन निर्पेशे
0: नमस्तन निर्नामे नमस्तन निर्काम
1: नमस्तन निर्दाते नमस्तन निर्काते
0: नमस्तन निधूते नमस्तन भूते
1: नमस्तन अलोक

0: ततेक पुरख दूत
1: गर्भ के नर सरपंचर आद रूप सूत
0: अंगहीन पंगनात्म एक पुरख पार
1: सर्व लाय सर्व काय सर्व को पिपार
0: सर्व कंता सर्व हंता सर्व तेन पेख
1: सर्व शास्त्र ना जानिए के रूप नाम दो रेख
0: परम वेद पुराण जाके नेत पाखत नित
1: कोटि में प्राण शास्त्र ना आदि बहु चित
0: वार शांत है प्रसाद गुणगान उदार में महापा
1: आसन अपंग उपगानंद
0: प्रकाश निस्त नना
1: आजान बाहु छहान
0: छहान
1: देवान देव उपमा महान
0: इंद्र बालान बार
1: रंका रंका नानकार
0: उतंग पापंग
1: गत तपार गुण गर उदार
0: पर नाम निरपेंद्र का
1: अद्भुत प्रचंड गत खंड
0: से कर्म दृश्य तर
1: सर्वा बनाते अंदर

0: भगवती शांत प्रसाद कथते किया छिज देसे किया पिज पैसे पिज लोके किया दित सो
1: के प्रभुत करने
0: के राजन प्रभा है के तरमन तुझा है
1: अशोक बरने के सर्वा परने
0: के जगतन कृति है के छत्रन छत्रि
1: ब्रह्म स्वरूप के अनुप अनुप
0: के आद अदेव है की आप अपेव
1: के चित्रन महीने के अधीन
0: के रोजी रजा के रही में रहा
1: पाक गैब है के गैबुल गैब है
0: के अफुल गुना है के साहन
1: के कारण कुनिंद है के रोजी दहिंद है
0: के राजक रहीम है के करमन करीम
1: है सर्वंग कली है के सर्वंग दली है
0: के सर्वत्र माने के सर्वत्र
1: के सर्वत्र गौने के सर्वत्र पौने
0: के सर्वत्र देशे के सर्वत्र पेशे
1: के सर्वत्र राजे के सर्वत्र साजे
0: के सर्वत्र दीने के सर्वत्र लीने
1: के सर्वत्र जाहो के सर्वत्र पाहो
0: के सर्वत्र देशे के सर्वत्र पेशे
1: के सर्वत्र काले के सर्वत्र पाले
0: के सर्वत्र हंता के सर्वत्र
1: के सर्वत्र पेखी के सर्वत्र पेखी
0: के सर्वत्र काजे के सर्वत्र
1: के सर्वत्र सोख के सर्वत्र पोख
0: के सर्वत्र त्राणे के सर्वत्र प्राण
1: के सर्वत्र देशे के सर्वत्र पेशे
0: के सर्वत्र माने सदैवन प्रदान
1: के सर्वत्र जापिए के सर्वत्र थापिए
0: के सर्वत्र पाने के सर्वत्र माने
1: के सर्वत्र इंद्र के सर्वत्र चंद्र
0: के सर्वन कलीम है परम फहीम
1: के अकल अलाम के साहिब कलाम
0: के हुस्नुल वजू है तमाम
1: हमेशा सलाम सलीख तुम दामे
0: गनीमुल सिकस्त है गरीबुल
1: पर बलिकुल मकाने जमीनुल जमाने
0: तमीजुल तमाम रजूल निदारे
1: हरफुल अजी मेरे जाए की यकीन है
0: अनेकुल तरंग है अपेद है अपंग है
1: अजीजुल निवाज है गनीमुल खिराज है
0: निरुपकत स्वरूप है त्रिमुकत पे भूत
1: है प्रभुक्त प्रभा है संयुक्त सुधा है
0: सदैवन स्वरूप है अपेति अनुप
1: समस्त उपराज है सदा सर्व साज है
0: समस्तुल सलाम है सदैवल अकाम
1: निर्वास रूप है अगाध है अनूप है
0: उन आद रूपे अनाद स्वरूपे
1: अनंगी अनामे त्रिभंगी त्रिका में
0: त्रिपंगन त्रिपादे अगंजे अगादे
1: सुमन सर्पागे सुसर्पा अनुरागे
0: त्रिभुगत स्वरूपे अछिजे अछूत
1: के नरक प्रनास है पृथुल प्रवास है
0: निरुपकत प्रभा है सदैवन सदा
1: है प्रभुक्त स्वरूप है प्रयुक्त अनूप है
0: निरुपकत सदा है विभुगत प्रभा
1: अनुक्त स्वरूप है प्रयुक्त अनूप है
0: चाचरी छंद अपांग है।

0: सर्वन हर्ता सर्वन कर्ता
1: सर्वन प्राणं सर्वन त्राणं
0: सर्वन कर्मन सर्वन तर्वन
1: सर्वन युक्ता सर्वन मुक्ता
0: सावल शांत प्रसाद नमो नरक नासे सदैवन प्रकाश
1: अनंग स्वरूपे अपंगं प्रभुते
0: माथन परमाथे सदा सर्वसाते
1: आकाश रूपे निर्बाध प्रभुते
0: अनंगी अनामे त्रिपंगी त्रिकामे
1: न पंगी स्वरूपे सर्वंगी अनुपे
0: न पुत्र न सत्र।

0: सर्वेश्वर है, जगदेश्वर है, मंडस है, कलकंडस है, पार्थे पर है, करुणाकर है,
1: अजपा जपे तपा तप है,
0: अक्ता कृत है, अमृता मृत है,
1: अमृता मृत है, करुणा कृत है,
0: अक्ता कृत है, करनी कृत है,
1: देश्वर है, परमेश्वर है,
0: अक्ता कृत है, अमृता मृत है,
1: अजपा कृत है, अमृता मृत
0: है, नायक है, कलकायक है,
1: विसंबर है, करणालय
0: है, नायक है, सर्पायक है,
1: पंजन है, अर्गंजन
0: है, तापन है, जप जापन है,
1: अकलन कृत है, सर्वा कृत है,
2: कर्ता कर है, हरता हर है,
1: परमात्म है, सर्वात्म
0: आत्म भास है, जस के जस है,
1: भुजंग प्रिया चंद, नमो सूर्य सूर्जे, नमो चंद्र चंद्रे,
0: नमो राज राजे, नमो इंद्र इंद्रे,
1: नमो अंधकारे, नमो तेज तेज,
0: नमो पितृ पितृ, नमो बीज बीजे,
1: नमो राज संग ताम संग शांत रूपे,
0: नमो परम तन तन तन तन स्वरूपे,
1: नमो जोग जोगे, नमो ज्ञान ज्ञान,
0: नमो मंत्र मंत्र, नमो ध्यान ध्यान,
1: नमो युद्ध युद्धे, नमो ज्ञान ज्ञान,
0: नमो भोज भोजे, नमो पान पाने,
1: नमो क्लय कर्ता, नमो शांत रूप,
0: नमो इंद्र इंद्र, अनादि प्रभुते,
1: अलंकार रूपे, अलंकार अलंकी,
0: नमो आशय आशय, नमो बांक बंके,
1: अपंगी स्वरूपे, अनंगी अनाम,
0: त्रिभंगी त्रिकाले, अनंगी अकामे,
1: कचरी चंद, अजय अलय अभय अभय,
0: अबू अजू अनाश अकाश,
1: अगंज अवंज, अलख पख,
0: अकाल यार, अलेख पेख,
1: अनाम काम गा अडा,
0: अनाथे परमाथे, अजोनी अमोनी,
1: नारागे नारंगे, नारूपे, नारेखे,
0: अकर्म अपर्म, अगंज अलेख,
1: भुजंग प्रिया चंद, नमस्तुल प्रणामे, समस्तुल प्रणास,
0: अगंजुल अनामे, समस्तुल निवासे,
1: कामन विभूते, समस्तल स्वरूपे,
0: कुकर्म प्रणासी, सुतर्म प्रभूते,
1: सच्चिदानंद सतरंग प्रणास,
0: करीमुल कुरिंदा, समस्तुल निवासी,
1: अजाय विभूते, गजाय
0: हरियम करियम, करीमुल रहिम।

0: देव फिरिंद निसाचर पूत पविक पवान जपेंगे
1: जीव जिते जल में थल में पल ही पल में सब थाप तपेंगे
0: पुन प्रतापन बाढ़ जैतुन पापन के बहु पुंज खपेंगे
1: सात समूह पर सन फिरे जल सतर सबे हम लोग जपेंगे
0: मानव इंद्र गजेंद्र नरादप जोन त्रिलोक को राज करेंगे
1: कोट नान गजात दान अनेक स्वयंवर साज बनेंगे
0: ब्रह्म हेसर बिसन सची पत अंत फसे जम फास परेंगे
1: जे नर श्री पत के प्रस है पग ते नर फिर न जे तरेंगे
0: कहा पे ओ जो दव लोचन मुंद के बैठ रहे हो भक्त ध्यान लगायो
1: नाथ फिर और ये सात समुद्र लोग गयो पर लोग गवायो
0: वास कियो बिख्यान सो बैठ के ऐसे ही ऐसे सो वैस बतायो
1: सास को सुन लो सबे जिन प्रेम कियो तिन ही प्रपायो
0: काहुले पाहन पूज तरे ओ सिर काहु लैलिंग

0: सभी जग श्री भगवान को
1: वाहेगुरु जी की फतेह। पातशाही दसवीं कवियो पाज बेनती चौपी हमनी करो हाथ रचा पूर्ण हुई चित की अच्छा
2: तब चनन मन रहे हमारा अपना जान करो प्रित पारा
1: दसवे तुम गावो आप हाथ मुई बचावो
2: सुखी बसे मोरो परिवार सेवक सिख सब कर तारा
1: निष्का दे करिए सब विरंग को वास करिए
2: पूर्ण हुई हमारी आशा तो भजन की रे प्यासा
1: शार को अपना दिया जो बो शो सो तुमसे पाओ
2: सेवक सिख समारे तारी है चुन चुन संसार हमारे।

0: बन दुष्टन के हंता तुमो पुरी चतुर्दश कंता
1: पाए ब्रह्म भवसरा काल पाए शिव जीव अवसरा
0: काल पाए कर विषम प्रकाशा सकल काल का किया तमाशा
1: काल जोगी शिव की वेद राज ज्योति
0: जवन काल सब

0: की पीर पिछाड़े
1: चिट्ठी ते कुंच रसूला सब पर कृपा दृष्टकर फूला
0: दुख पाए की सुख पाए सुरंगे सुगी
1: एक एक की पीर पिछाने कट कट के पट पट की जाने जब अत कर तुम कबू तुम्हें मित देकर सबू
0: से सब दारे आप अपनी बुझू।

किल्बिक सकल देखो हरता दुष्ण दोखियन को शय करता मन बाचित फल पावे सोई दुगनति से व्यापत कोई रिल दूध दरब पो निकनाथन है हो जो या कि एक बार चौपी को कहे चौपी पादुसुदी अस्तमीर

0: ओंकार सतगुर प्रसाद आनंद पिया मेरी माए सतगुरु में पाया
1: सतगुर ता पाया सहज सेती मन वधिया वधाइया
0: राग रतन परवार परिया शब्द गावनाइया
1: सतगुर ता गावो हरि केरा मन जिनी वसाइया।

0: कर कृपा जिन नाम लाए हैं से हर हर सदा ते आवे
1: जिसनु कथा सुनाए अपनी से गुरुद्वारे सुख पावे
0: कहे नानक सच्चे साहिब जो पावे तिवे चलावे
1: यो सोहेला सबद सुहावा सबदो सुहावा सदा सोहेला सत गुरु सुनाया
0: यो दिन के मन वस्या जिन तुरो लिखिया आया
1: एक फिरे कनेरे करे गल्ला गली किने ना पाया
0: कहे नानक शब्द सोहेला सत गुरु सुनाया
1: पवित होए से जना जिनी हर ते आया
0: हर ते आया पवित होए गुरमुख जिनी ते आया
1: पवित माता पिता कुटुंब सहित से पवित संगत सभाया
0: कहंदे पवित सुन दे पवित से पवित जिनी मन वसाया
1: कहे नानक से पवित जिनी गुरमुख हर हर ते आया
0: कर्मी सहज न उपजे बिन सहजे सहसा न जाए
1: न जाए सहसा किते संजम रहे कर्म कमाए
0: सहसे जीव मलीन है कित संजम तोता जाए
1: मन तो वो शब्द लागो हर्ष रो चित लाए
0: कहे नानक गुर प्रसादी सहज उपजे सहसा इव जाए
1: जियो मैले बारो निर्मल बारो निर्मल जियो त मैले तिनी जन्म जुए हारिया
0: हे दृष्णा वड्डा रोग लगा मरण मनोवे सारिया
1: वेदा में नाम उत्तम सो सुने नाही फिरे ज्यो में तालिया
0: कहे नानक जिन सच तजिया कूड़े लागे तिनी जन्म जुए हारिया
1: जियो निर्मल बारो निर्मल बारो त निर्मल जियो निर्मल सतगुर ते करनी कमानी
0: कूड़ की सोए पहुंचे नाही मनसा सच समानी
1: जन्म मृत्यु जिनी खट

0: पीबो नदर कर्म होवे हृदय दिन असमानी
1: पीबो अमृत सदा रो हर रंग जप्यो सारंग पानी
0: कहे नानक सदा गावो ए सच्ची वाणी
1: सतगुरु बिना होर कच्ची है वाणी
0: वाणी दा कच्ची सतगुरु वाजो होर कच्ची वाणी
1: कहंदे कच्चे सुनदे कच्चे कच्ची आख वखाणी
0: हर हर नित करे रचना कह कछु न जानी
1: जिन जिन काह लिया माया बोलन पे रवाणी
0: कहे नानक सतगुरु वाजो होर कच्ची वाणी
1: गुर का शब्द रतन है हीरे जित चढ़ाओ
0: शब्द रतन जित मन लागा एओ आसमाओ
1: समझ सेती मन मिलिया सच्चे लाया पाओ
0: आपे हीरा रतन आपे जिसनु दे बुझाए
1: कहे नानक शब्द रतन है हीरा जित चढ़ाओ
0: शिव सख्त आप पाए के करता आपे हुक्म बरताए
1: हुक्म बरताए आप वेखे गुरमुख किसे बुझाए
0: थोड़े बंधन होवे मुक्त शब्द मन बसाए
1: गुरमुख जिसनु आप करे सो होवे एक सो लिवलाए
0: कहे नानक आप करता आपे हुक्म बुझाए
1: सिमरत शास्त्र पुन पाप विचार दे तत्

0: के कर्म कमाया तुद शरीरा जा तू जग में आया
1: जिन हर तेरा रचन रचया सो हर मन ना बसाया
0: प्रसादी हर मन बसया पूर्व लिखिया पाया
1: कहे नानक यो शरीर परवान हो आज सतगुरु स्यों चित लाया।

0: अहंकार सतगुर प्रसाद पातशाही दसमेत प्रसाद सवैये दीनन की व्रत पाल करे नित संत उभार गनी मन गारे
1: सर्व समय सब को प्रित पारे
0: भोखत है जल में थल में पल में कल के नहीं कर्म बिचारे
1: दीन दयाल दया नित दोखन देखत है पर देत नहारे
0: दाखत है दुख दोखन को दल दुजन के पल में दल डारे
1: खंड खंड पर चन प्रहारन पूरन प्रेम की प्रीत संभारे
0: पार न पाए सके पद्मापत भेद कते भेद उचारे
1: रोजी ही राज बिलोकत राजक रोग रोहान की रोजी नटारे
0: कीट पतंग कुरंग पुजंगम भूत पविख पवान बनाए
1: देव अदेव खपे अनमेव न पेव लख्यो परम सेव परमाए
0: वेद पुराण कतेव कुरान सेव तके कर हाथ न आए
1: पूरन प्रेम प्रभाव बिना पद सेव किन श्री पद मा पद पाए
0: आद अनंत अगाध अद्वैक सो भूत पविख पवान अपै है
1: अंत विहीन अनात्म आप अदाग अधोग अछिद्र अछे है
0: लोगन के करता हरता जल में थल में भरता प्रभ भय है
1: दीन दयाल दया कर श्री सुंदर श्रीपद मापते हैं
0: काम न क्रोध न लोभ न मोह न रोग न

जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो। साच कहूँ सुन ले हो सबे, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो। सो कहो टल गुर सेविए, अहनिस सहज सुभाए, नरसन परसे आए गुरु के, जन्म मरण दुख जाए, होवे सिफत खसम दी, नूर अरसौ कुरसौ चटी है, तुद जिठे सचे पात साह, मल जन्म जन्म दी कटी है, सजन सचा

चेते ओम चा भगवन सगल समग्री तुम रह सुतर तार तुम ते हो ऐसो तुमरी गत मित तुम ही सदा कुर्बानी। बोलो जी वाहिगुरु। एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय वार। श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं प्रथम भगवती सिमर कै गुरु नानक लई त्याय। फिर अंगद गुरु ते अमरदास रामदास हुई सहाय। अर्जन हर गोबिंद नाम सिमरो श्री हर राय। श्री हर कृष्ण ते आइए जिस रिठे सब दुख जाए। तेग बहादुर सिमरे आए घर नौने दे आवै ताए। सब थाई होए सहाय। दसवां पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी। सब थाई होए सहाय।